ही न देसाई ले जाऊ फिरता मतलीन न कसई बनमा कोई दिन शिकार खेला दामा जलपान करनी नीति गई आश्रम देखी मलाई मोह भई चित खाई

0: रेडियो स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।